प्रसाद हाजर है, दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो ग्रीवनवाज, दर आई समूह संगत दियां हाजरियां पेटावां दर प्रवान करनियां, शुभ मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां, समूह परिवारां विच आपसी प्यार इतफाक सुख शांति तंदुरुस्तियां बख्शनियां,

आद बिरद प्रतपाला हर अमृत नाम भोजन रित पुंच सर्ब वेला मुख पाव जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोविंद नित गाव सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बनी आई प्रगट भई सगले जुग अंतरा गुरु नानक की वडियाई सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बनी आई

पंथ की राज करेगा चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अर्शों कुरसों चट्टी है तुद डिठे सच्चे पातशाह

जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस स्याणपा लख होहे ता एक ना चलै नाल

को साज करे तन खेह, गावै को जीव लै फिर देह, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी ना आवै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह, साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाओ अपार, आखह मंगह देह देह, दात करे दातार, फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार, मोहों के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक एवै जानिए सब आपे सचियार, थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान, गाविए सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहया समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विस्तर ना जाई, तीर्थ नावा जे तिस पावा, विण भाणे के नाए करी, जेती सिरठ उपाई वेखा, विण करमा के मिलै लई, मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसरना जाई, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोए, चंगा ना उर खाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे, तेहा कोए ना सुजई जे तिस गुण कोए करे, सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनै धरत तवल आकाश, सुनै दीप लो पाताल, सुनै पोहन सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, सुनै ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुनै मुख सालाहन मंद, सुनै जोग जोगत तन भेद, सुनै शास्त सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास, सुनै सत संतोख ज्ञान, सुनै अठसठ का इसनान, सुनै पढ़ पढ़ पावह मान, सुनै लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास।

साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दू जी बहु लख होहे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। एत राह पत पबड़िया चढ़िए हुए इकीस सुन गल्ला आकाश की

आनंद सरमखंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़ियै बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहै पिछै पछुताए तिथै घड़ियै सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़ियै सुरा सिद्धा की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महा बलसूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महमा माहे ताके रूप ना कसने जाहे ना ओह मरह ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार वेखै बिगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार भौ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ियै शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत।

गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं छपै छंद त्वा प्रसाद चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणजय त्रिभवन महीप।

रूपे नमस्तंग अनुपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनीले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अशेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सोए कै नमस्तंग अनेकै नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निरतूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग तरवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रपोगे नमस्तंग सोजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसंग अदेसे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्भामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तंग अपेवाय नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सोभनमे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमोस्त अबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रिहिमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है चूज है चंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है शूत है अलोक है अशोक है कर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रयात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ति विपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शासाहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इष्टनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनुपे रूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद करता अधोर्ध अर्धंग अगंग ओग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोष पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अशेदी अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्तुतामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं पुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ती निदाने नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं प्रमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धिं निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं।

बीज बीजे। नमो राज संग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बांके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद अजय लय पै भय, अपूआ जू अनास आकाश, अगंज पंज अलख पख, अकाल दयाल अलेख अपेख, अनाम अकाम अगाह अटाह, अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजल अनामे समस्तुल निवासे, निरकामं विपूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विपूते, सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी।

समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लिहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पुछा को शीस निवायो को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम का वहो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बस

आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जोबर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जजू करिय हो रच्छा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। कीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख कराकर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप आपनी बूझो चार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरे आलम।

गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तगावो हरी केरा मन जिनी वसाया।

अमृत छाड़ बिखै बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई।

रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पास आ रहा चीत करन मन भाम दे हर बुजन नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख मेहलत मरण विसारिया जरा ही जोवन हारिया।

मंद भागे तेरो दर्शन नाहे, तू तरवर हौ पंखी आहे। मंद भागे तेरो दर्शन नाहे, तू सतगुर हौ नौतन चेला। कह कबीर मिल अंत की बेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। चंद चकोर परीत है, चंद चकोर परीत है, लाए तार निहाले, चकवी सूरज हेत है, मिल होन सुखाले। नेहो कवल जल जानिया,

महान प्रसिद्ध कथाकार हुए संत ज्ञानी निरंजन सिंह जी पटियाले गुरद्वारा श्री दुख निवारण नौवें पातशाह दे स्थान ते उन्हां महापुरखां ने अपने जीवन दे तकरीबन 50 साल गुरु दरबार विच कथा दी सेवा कीती और पंथ ने उन्हां नूं श्रोमणी संत सकालर श्रोमणी कथाकार का खिताब दिता से। चंगे विद्वान पुरश से वो जग्यासू का अर्थ करया करते सन। वो कहते जग्यासू किसन कहते हैं कि जाग पई है जिन्हों के मन में आसा उस परमेशर मिलन दी। जग्यासू का अर्थ है कि जाग पई है आस जिन्हों के मन में रब न मिलन दी उन्हों कहते हैं जग्यासू। आपां अपने अंदर झाती मार के वेखीए असी तो हाले ताईं जग्यासू भी नहीं बन सके। जग्यासू वह है जिहदे अंदर प्रभु नूं मिलन दी तांग होवे। जग्यासू वह है जिहनूं रब नूं मिलन दी आस होवे। वह जग्यासू है। तो आपां सतगुरां दे चरणां च जग्यासू बन के आउंदे आ तदे गुरबाणी का कीर्तन सुनना गुरबाणी की कथा सुननी वो इसे प्रयोजन नूं सिद्ध करन वास्ते है कि सानू कोई ऐसी जुगत मिल जाए जिहदे नाल असीं विछड़े हुए पार ब्रह्म परमेशर दे सरूप च मिल के अभेद हो सकीए। तो सतगुरु जी ने दया कीती है सानू अपनी निघी गोद दा निघ प्रदान कीता। लड़ीवार कथा गौड़ी राग विच सतगुरु पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब जी दे पवित्र शब्दां दी आपां विचार रहे हाँ। आओ कुछ समय लई मन विरतियां एकाग्र करिए। सतगुरु पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी दे पवित्र चरणां दा ध्यान अपने हिरदयां च धारण करदे होया रसना नूं पवित्र करदे हां। समूह माई भाई आखो जी।

0: बार बार वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम दी साधना द्वारा सारे पाप सड़ के सवाह हो जाणगे और हिरदे नूं शुद्धि प्राप्त होवेगी।
1: बिनवंत नानक करहो कृपा गोपाल गोबिंद माधो।
0: धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी फरमाउंदे, हे प्रभु मेरी बेनती है। बिनवंत, बिनवंत दा मतलब हुंदा बेनती। महाराज मेरी बेनती है, करहो कृपा, महाराज साडे ते कृपा करो। कृपा करहो दीन के दाते, महाराज दीना ते दया करन वाले साहब जी साडे ते कृपा करो। बार बार कृपा ही मंगनी है गुरु चरणा च। तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे, महाराज तुहाडी कृपा च बड़े सुख ने, कृपा करो। कृपा की जैसा मत दीजै, आठ पहर तुद त्याई, महाराज कृपा करो। साडी बेनती है सतगुरु जी आप जी दे चरणा च, कृपा करो। बिनवंत नानक करहो कृपा गोपाल गोबिंद माधो। हे गोपाल, गो नाम धरती दा, पाल नाम पालन वाले दा। गो नाम गऊआं दा, पाल नाम पालन वाले दा। जितने संसार दे असीं जीव आ, परमेश्वर दीआं गऊआं आ सारे, ते परमेश्वर सानू पालन वाला गोपाल है, उहनू तां कहिंदे ने गोपाल। कहिंदे ऐसे गोपाल नू, ऐसे गोबिंद नू, ऐसे माधो नू साडी बेनती है कि महाराज जी साडे ते कृपा करो कि असी आप जी दे अमृत नाम की आराधना करते रहिए। बार बार आप जी दे नाम नू सिमरते रहिए। ये कृपा अकाल पुरख के चरणा चो मंगनी है। महापुरख कहिंदे भी कदे भी अपने भजन का फल नहीं मंगना, भी जिहड़ा मैं नितनेम किया जां बाणी पढ़ी है इहदा फल दिओ। जदों भी नितनेम करते हो जां बाणी पढ़ते हो, भजन करते हो, गुरु साहब के चरणां च यही कहना, महाराज कृपा करो, कृपा करो। साडा कोई वस नहीं, साडा कोई जोर नहीं कि असीं अपने ताण नाल बाणी पढ़ सकीए, भजन कर सकीए, तुहाडी संगत च आ सकीए। महाराज कृपा करो। प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। हे कृपा निधान साहब जी साडे ते कृपा करो, असी आप जी दे गुण गाइए, आप जी दा नाम जपिए, आप जी दे नाम नू अपने स्वासां च वसाइए। ये बेनती करन दा तरीका सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब पंजवें पातशाह जी महाराज जी ने सानू दस्या है। सतगुरु जी कृपा करन, ये पावन पवित्र गुरबाणी दी पावन विचार साडे हिरदयां विच वस जावे, साडा सारयां दा गाव्या सुनिया सतगुरु जी थाएं पावन, अपने दरों करों नाम दियां दातां, गुरसिखी जीवन चढ़दियां कलां, अमृत वेले दे जागणे, बाणी और बाणे दा प्रेम और गुरु खालसे पंथ की सेवा करन दी बल बुद्धि प्रेरणा बख्श के सतगुरु जी सानू नवाजण। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां, होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। आओ छंत दियां खीरलियां पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी।

चित्त जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत जग रचना तैसे रची कह नानक सुन मीत प्राणी कशु ना चेतई मद माया कै अंद कह नानक बिन हर भजन परत ताहे जम

कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तेह जान। हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोविंद नाम। कहो नानक बिन हार

नानक ए बिद हर भजो एक मन होए एक चित तीर्थ बरत अर दान कर मन में धरै गुमान तीर्थ बरत अर दान कर मन में धरै गुमान नानक निफल जात तेहे ज्यों कुंचर इशनान सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोत तेहीन कहो नानक एह बिद पही तऊ ना हार रस लीन निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है तेह राखो मन माहे जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत कह नानक थिर ना रह।

कहो नानक अब ओट हार गाज ज्यों हो सहाय बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय कहो नानक नानक सब किछ तुम रह हाथ में तुम ही होत सहाय बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय नानक सब किछ तुम रह हाथ में तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज गए को

जाके सामने ही को जे सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुदावणी महला पंजवां। थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित राखुर तारो तम संसार

राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग भैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बिलावली पुनयाकी गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए भैरों की पंचो नारी पंचम हर्ष दिसाख सुनाव है बंगालम मद माधव गाव है ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागिनी पंचो थाप है गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पंचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उबारा खोखट पौरा नद गाये अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठे तान कलोल गायन तार मिलाव ही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद भास्कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरसबान ओ आहे विनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी ओ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपट के नाम कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औकन रा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गाव है पंचो संग बरंगन लाव है बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछै सिंध वी अलापी श्री राग स्यो पंचो थापी सालू सारंग सागरा और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वै गाव है पंचो संग बरंगन लाव है सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी ऊंचे सुर सूहो पुन कीनी मेघ राग स्यो पंचो चीनी बैरा धर गज धर के दारा जबली धर नाट्यो जल धारा पुन गावे शंकर ओ श्यामा मेघ

सब पुत्र रागन के 18 दस 20 सतनाम श्री वाहिगुरु जी रामकली साध एको अंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वशल तिहो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल तोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर भाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो।

निखंजनों सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभु सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुरु मिलाया धन धन कह साबाश जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबाश जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मेलावे तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाना फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर भाणे अपने बह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पै नावे सतगुरु प्रतख हुंदे बहराज आप टिकाया सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सदे हो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुर है भाणा दी वड्याई हर गुर है भाणा दी वड्याई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो

प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो। आप जी नू सुंदर वस्त्र भेंट कीते गए हन, पातशाह सेवावां थाए पौणियां, पिछे परिवार विच आपसी प्यार इतफाक सुख शांति तंदुरुस्ती चढ़दी कला करनी, पातशाह जी कारोबारां विच बरकतां पौणियां, जेड़े भंडारियां विचों रसदां वसदां माया आई सो भंडारे खजाने भरपूर करन।

काल कंटक दूर करने दर आई, समूह संगत दिया भेटावा हाजरियां प्रवान करनिया, शुभ मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनिया, सेई प्यारे मेल।

गुण निदान गुण तिन ही गाए जा को कृपा तारी सो सुखिया धन उस जन्म नानक तिस बलिहारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक दसां पातशाहियां दी जागत जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर सरदार जोगिंदर सिंह गिल होरां दी अंतम अरदास विच एकत्र होई गुरु सारी साध संगत जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा महावाक राणा राओ न को रहै रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोय न बंधै धीर दे महावाक अनुसार सरदार जोगिंदर सिंह होरी अपने परिवार और साख संबंधियों नू सदीवी विछोड़ा दे गए। उन्हां दी अंतम अरदास होई जिन्ने भी माई भाई साख संबंधी रिश्तेदार सज्जन मित्र परिवार दे दुख दे समय विच दुख नू वंडाउण लई आए परिवार वल्लों सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। गुरद्वारा साहिब दी प्रबंधक कमेटी गुरद्वारा साहिब दे समुचे स्टाफ वल्लों परिवार नाल हमदर्दी दा प्रगटावा कीता जांदा है। सो परिवार दा दुख संगत दा दुख है क्योंकि आपां सारे मनुख ही एक परिवार हाँ। सतगुरु पातशाह वचन करदे ने एक पिता एक सके हम बारक अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। सतगुरु कृपा करन परिवार नू भाणा मनन दा बल बख्शिश करन। सो बेनती है परिवार वल्लों आई हुई समूह संगत नू के सारी संगत ने गुरु के लंगर छक के जाण दी कृपालता करनी जी। होइयां दासां तों जो समागम दौरान कोई सूखम जां स्थूल भुल्लां होइयां ने खिमा दे जाचखां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

राग गूजरी महला पंजवां काहे रे मन चित वह उदम जां आहर हर जीओ परया शैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आगै कार तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुरप्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोग सुत बनता कोई ना किस की तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाहु करिया उड़े उड़े आवे सह कोसा तिस पाचै बचरे चरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कार तल तरिया जन नानक बल बल सत बल जाइया तेरा अंत ना पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब ते आवहें सब ते आवह तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पे खारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवहें जो सेवहें तुद जी जा नानक तिन कुर्बाणा हर ते आवहें हर ते आवह तुद जी से जन युग मह सुखवासी से मुकत भय जिन हर ते आया जी तिन तूटी जम की फांसी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ ते आया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ते आया जी जा नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडहार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सालाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तपहें जपहें बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत सासत जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत पले जा नानक जी जो पाव है मेरे हर भगवंता
ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇ ਵੜਿਆ ਵਰਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਿਸ਼ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਯੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਯੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣ ਆਹੀ, ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਿਤ ਸਰਵੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹੇ ਕੀਆ। ਪੰਕੁਜ ਮੋਹ ਪਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿਂ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ,

तिसही को हमारी सगल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिंटी ते कुंचर अस थूला सापर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना जब उदक रख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अक रख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रिश सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरयालम निरंकार निर्विकार निर्लंभ आद अनिल अनादा संभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कह सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहो रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भय शंकर इकैठा सगरी शिष्ट दिखाया चम भाव आद जुगाद स्वरूप स्वाम भाव अब रचा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संग्रो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तोयताब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहव मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निष्ठ नह आए है रच्चा होए ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाहे निहर हो ताके ताप तन कमो हर हो रिद सिद्ध करमो सब होई दुच्छा छवै सकै ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहें उभारा जिन नर नाम तिहारू काहा दारिद दुष्ट दोख तेराहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ लेहो उबारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौ आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहयो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गयो तुहारो द्वार।

सचे साहिबा क्या नाहीं कर तेरा, करता तेरा सब किछ है, जिस देहे सो पावे सदा सिवसा लाहा तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनका मन वसया, वाजे शब्द कन्हेरे, कह नानक सचे साहिब क्या नाहीं कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पूजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दियां इह वडियाइया। कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागा, घर सुभागा शब्द वाजे, कला जित कर तहारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिनका, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होवा, तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे, पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर है आपार पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहत तूरे।

ताका धोखा कहां ब्यापै जाको ओठ तुहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरदारी नाव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी गुण निदान गुण तिन ही गाए जाका कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलहारी गुण निदान गुण तिन ही गाए जाका कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलहारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।